0: कपकपाने वाले तोड़फोड़ परफॉर्मेंस के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
1: Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे